चीटी ते कुंचर स्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट की जान है जबुद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बद

कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अबरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बतो तपाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जबन पग परे।

वैसे ऐसा लग रहा है कि थम भी गई है बरसात। खैर, विमल चड्डा ने कहा है कि देखो, जो गलत और सही के बीच रास्ता है, कौन सा आपने अपनाना है, इसका फैसला जो है आप अपने ज़मीर पर छोड़ दें। अपनी कॉन्शियंस से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता आपने इख्तियार करना है। विमल, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले जो आया है हमें मैसेज, वो है सोनल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सोनल। और क्योंकि ये रूपल की बहन है, आजकल बिल्कुल इन्होंने सुनना शुरू कर दिया है। गुड मॉर्निंग इटली से भी आया है, और शुभ प्रभात इंडिया से। अ पर्सन हु सफर्स कैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, बट अ पर्सन हु कॉजेज सफरिंग कैन नेवर एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। कहते हैं कि जो खुशी का अनुभव करे, कहते हैं कि हु सफर्स कैन एक्सपीरियंस, नहीं, अ पर्सन हु सफर्स, जो तकलीफ देखता है वो खुशी भी देखता है, लेकिन जो दूसरों को तकलीफ देता है वो कभी खुशी नहीं पाता। क्या बात है, जो थुक, ये अच्छा उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भेज दी है एम एल विश्वकर्मा ने। उन्होंने कहा है जो दुख सह रहा है वो एक दिन अवश्य सुखी सुख का आनंद ले सकेगा, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है उसको कभी सुख का अनुभव नहीं होगा। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है एम एल विश्वकर्मा। और एम एल के बाद किसका मैसेज हमने पढ़ा है, रूपल कहते हैं, आई नो यू हैड प्लेड द सॉन्ग प्रवीण जी, बट वंस अगेन मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट, आई लव इट, यू आर राइट। ओके, ये अदनान सामी का है शायद, हाँ वो मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ा अच्छा किसी ने लिखा है, मुझे भी तू लिफ्ट करा दे, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझे भी दे दे। रूपल, गुड वन, करती हूँ, लेकिन पहले क्या करते हैं कि समय, नॉट सो ओल्ड, इतना पुराना गाना नहीं है, रूप कुमार राठौड़ का है,

0: प्यार अली भाटिया ने एक्चुअली एक मैसेज भी भेजा है. क्या है? कहते दुनिया के सबसे जलील इंसान, यानी बदतरीन बुरा, दुनिया का सबसे जलील इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो लेकिन फिर भी वो अपने फायदे या खौफ की वजह से झूठ का साथ दे. समझ, आजकल सारी दुनिया इसी तरह है. उनको पता है हक क्या है लेकिन वो झूठ के साथ खड़े हैं, क्योंकि सच का साथ देना हर किसी के बस की बात नहीं होती. इसलिए जमीर को जिंदा होना, जमीर का जिंदा होना बहुत जरूरी है. प्यार अली भाटिया, दैट वाज वेरी गुड. और भरत गंगाराम क्या कहते हैं, मंगलवार की मंगल कामनाएं वंदनीय प्रवीण जी. भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन, सो ग्लैड टू हियर दैट. और सलमा,
1: अ क्वोट, मेक योर लाइफ कप फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, कलरफुल ड्रीम्स, bright opportunities, little joys, warm happiness and beautiful tomorrows. Fill it with what makes your heart smile. Thank you, Salma Ahmed, Kisumu.
0: Aur Rupal intezar kar rahi hai lift ka.
2: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: और समय खुदा ने गलती की कि कहा इंसान को मांग जो मांगता है मैं देने वाला हूँ छप्पड़ फाड़ के देता हूँ। अब वो मांगने वाला देखो गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग रहा, वो कहता डॉलर दे दे पाउंड दे दे जो तू चाहता है गाड़ी दे दे जहाज दे दे बंगला दे दे अपनी जेबें खाली कर दे सोना चांदी एरोप्लेन हीरे मोती दे दे मुझे कुछ तो मिलेगा सामने, इतनी बड़ी मांग है अदनान समी की। रूपल उम्मीद है आपने ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय किया होगा। अच्छा चिराग पटेल ने गुड मॉर्निंग कह दिया सबको और कोकिला फ्रॉम यूके कहते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड यास्मिन की बर्थडे है, शी इज़ वन इन अ मिलियन, बेस्ट विशेस फ्रॉम प्यार अली हनीफ एंड कोकिला एंड फैमिली, प्लीज़ कोई बर्थडे सॉन्ग उनके लिए, यही अच्छा होता मुझको तू लिफ्ट कराते। ओके देखती हूँ अगर वक्त मिलता है तो। ठीक है कोकिला की जानिब से यास्मिन हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी जानिब से भी हैप्पी बर्थडे।
1: अस्सलाम वालेकुम परवीन जी केम छो, वेदर के भी फाइन से आज कमाल नी ने तमे गायन भी एवो आप्यो छे वेरी नाइस बरसात के मौसम में आप दिल खुश थई गयो छे दिल ओके आवाज गायन आप आज आपता जाजो कारण के आज
0: जरूर जरूर आपता जाऊंगी। लेकिन ये आप समझ आप देखते हैं कि गुजराती आपकी और फातिमा यमानी की गुजराती में फ़र्क है थोड़ा सा आप महसूस करते हैं कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि है। खैर थैंक यू फातिमा सनाकाना, आपने कह दिया कि सुन रहे हैं। और आउटर रिंग रोड हेडिंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट नॉर्थ रोड साइड इज़ मूविंग, हाँ क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया है ना पास को तो ट्रैफिक होगा काफ़ी एयरपोर्ट जाते हुए। खैर अमीर अली राना, परवीन जी गुड मॉर्निंग टू ऑल द बेमिसाल अंदाज फैमिली, कुछ लोग दिल से मिलते हैं जिंदगी बन जाते हैं, कुछ सिर्फ सपनों तक आते हैं फिर ख्वाब बन जाते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं वो दूर हो जाते हैं फिर भी दिल के कोने में उनकी यादें हमेशा बसी रहती हैं। अमीर अली राना सही कहा आपने। और टुडे रूपल का तो वो कर दिया, उन्होंने थैंक कर दिया। चंद्रिका वासंत गोसाई कहती हैं बहुत अच्छे गाने एंजॉय कर रहे हैं, चलिए अगला भी।
2: ईस्ट एफएम, दिस इज ईस्ट एफएम केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।
3: इट्स 10:23।
4: Find trusted world-class healthcare right in your neighborhood. Aga Khan University Hospital is bringing specialized care closer to home with convenient clinics at Peponi, Muthiti, Rapta Road, Mountain View and our new executive center in Gigiri. From cardiologists, pediatricians and gynecologists to full diagnostic labs, pharmacies and even home care services, we've got your whole family covered. Book your appointment today. Call 0730-011-888. Aga Khan University Hospital. World-class care, here and now.
5: These top jobs are waiting for you. On myjobsinkenya.com.
6: Zerma and Company Advocates, an established law firm, is seeking a professional, highly organized and proactive receptionist / legal front office administrator. Diploma in business administration, secretarial studies, front office management, legal studies or a related field, and 2 to 3 years relevant experience, preferably within a law firm or legal service environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply. Our client in the events industry is seeking to recruit a sales executive, bachelor's degree in sales, marketing, business or related field, 2 to 5 years experience in sales, events industry preferred, with a proven track record of meeting or exceeding sales targets is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
7: Kenya's premier Asian mix continues.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: किसी ने कॉल किया है और कहा है कि मुझे मेरी रिश्तेदार ने कहा है कि प्लीज रेडियो ऑन करो, बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं। फरीदा कश्मीरी लंदन से लौट आई। फरीदा, अगला गाना मैं आपके लिए, और वो आपको पसंद भी आएगा, फिल्म आज़ाद का है। तो फरीदा कश्मीरी, वेलकम बैक। परवीन भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। भास्कर पटेल मैनचेस्टर में हैं, कहते हैं अभी अभी आपने अदनान सामी की बात की है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 2004 में वो नैरोबी आए थे कॉन्सर्ट पे। जी, मैं भी वहीं थी, कानिवोर में कॉन्सर्ट हुई थी अदनान सामी की। और आपने कहा कि डेढ़ बजे दूसरे दिन डेढ़ बजे तक रात के वो गाते रहे और लोग इतना एंजॉय लोगों ने किया। कहते हैं बजाते खुद मैं फील करता हूँ, भास्कर पटेल कहते हैं कि इट वाज द बेस्ट कॉन्सर्ट दैट नैरोबी होस्टेड। ये बिल्कुल सही आपने कहा है, मैं भी थी वहीं। अच्छा, भास्कर के बाद चलते हैं किसके पास, शब्बीर अहमद इन लंदन। आप सुन रहे हैं मनर पटेल, ना जाने यूरोप के कौन से देश में होंगे।
1: हेलो ईस्ट एफएम लिसनर्स, मेरे को चाहिए डॉलर पाउंड सब कुछ अभी, क्योंकि मैं यूके में जाने वाला हूं एक दो दिन में, तो उधर मेरे को काम आएगा, बाद में मैं लौटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मनर पटेल फ्रॉम फ्रांस। थैंक यू।
0: ये लीजिएगा, मनर पटेल फ्रांस पहुंचे हुए हैं, कहते मुझे भी डॉलर की जरूरत है। अब वो सारे अदनान समी ले गया है, मैं क्या करूं मनर, मुझे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि अगर कुछ बचे खुचे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी मांगें की थी तो लगता है कि खुदा ने जेबें खाली कर दी थी उस वक्त। अब पूछना पड़ेगा कि मनर पटेल के लिए कुछ बाकी है कि नहीं। अब यहाँ पर हैं के कल्पना। गुड मॉर्निंग, इंडिया टुडे 15th इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे। अच्छा, व्हाट अ गुड आइडिया, इंजीनियर्स डे। और डू यू नो हुज बर्थडे इट इज, के कहीं आपकी तो नहीं है, बताएं। मंजुला विश्वकर्मा फ्रॉम इंडिया।
2: मंगलवार की मंगलमय सुबह आप सबको। आज का कोच जूझती रही, बिखरती रही, टूटती रही, कुछ इस तरह जिंदगी निखरती रही। शुभ प्रभात।
0: ब्यूटिफुल, आई वॉन्ट टू प्ले इट अगेन मंजुला।
2: मंगलवार की मंगलमय सुबह आप सबको। आज का कोच जूझती रही, बिखरती रही, टूटती रही, कुछ इस तरह जिंदगी निखरती रही। शुभ प्रभात।
0: बहुत अच्छे, इसलिए अगला गाना आपको और फरीदा कश्मीरी।

और समझिए इस अखबार की 1,00,000 कॉपीज मुफ्त में बांट दी जाएं, वो अखबार में कुछ तो होगा। बहुत लोग पसंद करते हैं ट्यूसडे स्टार, आज आपको मुफ्त दी जा रही है, हर मंगल को मुफ्त होती है। आपने दूसरों से एक कदम आगे रहना है, बाशऊर लोग अपने आप को कहते हैं ना, उनसे भी आगे आपने निकलना है। ये अखबार खरीद कर आपने जॉब्स ढूंढने हैं, सरकारी जो असामियाँ इसी में मिलती हैं आपको, माई गव सेक्शन आपने निकालना है और देखना है कि कौन से टेंडर्स निकले हैं सरकार के, वो आपने भरने हैं। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका जो भविष्य है वो रोशन हो जाएगा। 10 स्टार अब मिलेगी कहाँ से सामिन? ये मिलेगी आपको नायवा सुपरमार्केट, चंदाराना क्विक मार्ट, कारफोर, एसजीआर, नैरोबी के जो कम्यूटर स्टेशंस हैं, पोस्ट ऑफिसेज में, हुडुमा सेंटर्स में, हर जगह आज आपको ट्यूसडे स्टार बिल्कुल मुफ्त मिलेगी।

0: एक के बाद एक नायाब गौहर हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। खैर अब चलते हैं, कव्वे की खबर है। साउथ अफ्रीका शमीम ने कहा है, क्रोज विजिट देयर एजिंग पेरेंट्स इयर्स आफ्टर लीविंग। कहते वो घोंसला छोड़ देते हैं लेकिन सालों बाद भी अपने जो माँ बाप हैं उनको देखने आते हैं। क्रोज कव्वे, दे हेल्प रेज देयर सिबलिंग्स गैदर क्वाइटली अराउंड देयर डेड। अच्छा, बहुत अच्छे। ओके, अब देखते हैं कि जबीन हीरानी ने क्या लिखा है। कहते हैं, चेहरे की हंसी से हर गम छुपाओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना बताओ, खुद ना रूठो कभी पर, सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का, बस जीते जाओ। योर प्रोग्राम इज एडिक्टिव जबीन हीरानी, ऑलवेज सो एंटरटेनिंग एंड एंजॉयबल। बस अच्छी बात है। और आपने कहा, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। वाह जबीन हीरानी, दैट वाज ग्रेट। अमीर अली राना परवीन जी, कैन यू प्लीज मीना कुमारी का सॉन्ग्स टुमारो। ओके, ठीक है ठीक है, आपके लिए अमीर अली राना। और मेरी तो बर्थडे नहीं है आज, इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर विश्व कर्मा एन इंडियन, सर एम विश्वेश्वरिया, एन इंडियन सिविल इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेट्समैन। ही सर्व्ड एज द दीवान ऑफ मैसूर, अच्छा, इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अमंग द मैनी मार्वलस वर्क्स इज क्रेडिटेड इज द कृष्ण सागर डैम इन कर्नाटका। उन्होंने कृष्णा सागर बंद बनवाया था कर्नाटका में। टुडे इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे टू ऑनर, अच्छा अच्छा, इनके ऑनर में ये इंजीनियर्स डे है। बहुत शुक्रिया कल्पना, ये इनका नाम है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया तो बहुत लंबा नाम है पर उनको याद करना है आज। शबीर अहमद जबरदस्त, क्या कोरस था जोरा भाई अंबाले वाली, कैसे भूल सकते हैं हम, है ना, वंडरफुल।
1: रविन जी, रिम जिम बरस है भादरवा, ये गाना फिल्म रतन का है, 1944 की मूवी है, जिसको जोरा भाई अंबाली वाला और कोरस ने गाया है, और जिसको लिखा है एनडी मटकोर ने लिखा है, और जिसकी धुन नौशाद ने बनाई है। ये पुराना गाना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गाना बहुत अच्छा लगा।
2: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
3: East FM,
2: Kenya's premier Asian mix. Asian mix.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. The teams are ready. The cups are waiting. Mario Cup is back with Season 3 and more action-packed than ever. 3 weekends of non-stop box cricket. And this year, the competition gets even bigger. Introducing the Mario Cup Women's League and the stars of tomorrow, the Mario Cup Juniors League. The action begins on September 5th at the Oswald Centre, AstroTurf. It's more than just a cricket tournament. Enjoy delicious food from our food stalls. Take part in exciting fun activities and get your raffle tickets for a chance to win amazing prizes. Mario Cup Season 3 from September 5th at the Oswald Centre, AstroTurf. Powered by Tononoka Group and supported by ArvoCap Asset Managers and Mutara Cap. Media Partner, East FM.
5: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
6: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Bandheri Road, Parklands. Also, Shri Icon 3rd Parklands, Shri Gurdwara Ramgarhia Railway, South Sea. Nairobi Sports House, Mombasa branches, City Mall, Nyali, Faza and Likoni Mall.
7: Shape your future at Uniserve Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26th September from 10 a.m. Entry free. Uniserve Education. Master your own destiny.
2: East FM.

हुआ क्या है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है उसके मेंबर हैं, परग शाह, रियासत के अमीर तरीन लेजिस्लेटर्स में हैं, कारोबार होगा बहुत बड़ा, अमीर हैं, मगर मुंबई की सड़कों पर भेस बदल कर भीख मांगते दिखे। जी हाँ, एक दिन लोगों ने देखा कि ये तो कोई जाना पहचाना चेहरा है, अपनी कीमती गाड़ी को छोड़ सिक्योरिटी जो अहलकार थे उनसे दूर, शाह ने खाना भी दान किया हुआ खाया उस दिन। तो क्यों ऐसा किया? कहते हैं कि जीवन की हकीकत जानने के लिए। ये तो कहा, मगर कैसे ख्याल आया कि जीवन की हकीकत जाननी है? कहते कि पता क्या, मैं ना जैन हूं और एक जैन गुरुजी ने कहा था कि आपको ये करना पड़ेगा, एक दिन आपने भीख मांगनी है। लेकिन लोगों ने पहचान लिया, हालांकि मेकअप से अपना काफी चेहरा छुपाया हुआ था, लेकिन लोगों ने परग शाह को पहचान लिया और कहते हैं कि बताइएगा फिर आपने क्या पाया मुंबई के लोगों के बारे में। कहने लगे, बड़े अच्छे लोग हैं ये मुंबई वाले, जिन्होंने मुझे भिखारी समझा, सब ने मुझे, किसी ने समोसा दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, क्या कुछ नहीं मुझे मिला, मुंबई के लोग बड़े दिल वाले हैं।

0: और सना काना, आपने कहा है कि ये अभी गाना जो आपने सुनाया लगी आज दिल में, कहते हैं वो चांदनी फिल्म थी 1989 श्रीदेवी और ऋषि कपूर की। जी हाँ, बहुत अच्छे, थैंक यू। और समझ, हिंदी दिवस आप जानते हैं कि भारत में बहुत हिंदी को प्रमोट करने के लिए मुहिम चलाई गई और फिर हिंदी दिवस भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसमें जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म, उनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो हिंदी दिवस डिक्लेयर कर दिया गया और फिर मध्य प्रदेश में 10 करोड़ रुपी खर्च किए गए। क्यों? समझने, इसी हिंदी के फरोख के लिए कि ये भाषा लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और बोलें। तो 50,000 मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, जो लोग डॉक्टरी की तालीम हासिल करते हैं ना, जो छात्र, उनके लिए 50,000 टेक्स्ट बुक्स छापी गई हिंदी में। मेडिकल, आप तो जानते हैं अंग्रेज़ी में है, लेकिन उनको ट्रांसलेट किया गया। कहते हैं 300 माहिर, 300 एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ये ट्रांसलेशंस हुई कि हमें इनकरेज करना है मेडिकल स्कूल्स में कि वो हिंदी में सीखें भी और हिंदी को सक्सीड कर कामयाब करें। कॉलेजेस के छात्रों को दी गई, मुयस्सर की गई ये किताबें कि ये लो टेक्स्ट बुक्स इन हिंदी, डॉक्टरी का इल्म आपको हिंदी में हासिल करना है। तो ये चार साल पहले हुआ, सब कुछ मुफ्त में मुहैया किया गया, लेकिन समझ वो 10 करोड़ रुपी क्या हुआ। कहते हैं एक स्टूडेंट ने भी 4 वर्षों में हिंदी का इम्तिहान नहीं लिया, किसी स्टूडेंट ने। प्रधान मोदी और अमित शाह जो उनके हैं दाएं बाजू, उनका ये इनिशिएटिव समिन बिल्कुल नाकाम हो गया। अब बात ये है कि आप हिंदी के फरोग के लिए ये टेक्निकल जहां लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जहां स्पेशल जागन होता है, जहां स्पेशल तरह की वर्ड्स होते हैं, फ्रेजियोलॉजी होती है, तो आप उसको अचानक से बदल के, और फिर अंग्रेज़ी में जो किताबें हैं दुनिया के कोने कोने में इंग्लिश में ही होंगी ना। मेडिकल, आप अगर जाते हैं डॉक्टर बनकर बाहर तो आपको अंग्रेज़ी ही बोलनी पड़ेगी, अगर आप हिंदी में डायग्नोज करेंगे तो क्या होगा।
1: दिस इज ईस्ट FM, Kenya's premier Asian mix.
2: रोज साढ़े नाल जुड़ो गुरबाणी प्रोग्राम अते गुरमुख विचारां वास्ते सवेरे 6 बजे तो लैके 7 बजे तक। स्टार्ट योर डे विद पीस एंड डिवोशन। द ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया बोर्ड ब्रिंग्स टू यू रिलीजियस प्रेयर्स। ट्यून इन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन जर्नी एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 6 AM टू 7 AM ऑन ईस्ट FM, ब्रॉट टू यू बाय द ईस्ट अफ्रीकन।

0: यूसुफ भट्ट कह रहे हैं कि गाना सुन के तो ऐसा लग रहा है हम भी उड़ रहे हैं हवा दे नाल। बहुत ही समय अच्छा फोक सॉन्ग था। और पहला आंसर मुझे किससे मिला है? जैनब। वंडरफुल जैनब, वेल डन, करेक्ट आंसर। साथ आपके एट द सेम टाइम 11:04 पर के ने भी बता दिया क्या आंसर है। कल्पना, करेक्ट आंसर। मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल सही, थर्ड कॉलर। और जतिंदर, जतिंदर की बात सुन लेते हैं।
1: हेलो प्रवीण जी, उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, किन्ना सोना गाना वा। असी बेमिसाल दे अच्छे अच्छे गाने दे नाल उड़ उड़ के जाने हैं। थैंक यू जी।
0: अच्छा, उड़ के फिर वापस वहीं आना है, ये नहीं कि उड़ जाएं, बिल्कुल यूरोप की फिजाओं में जाके। अच्छा समीन, ये लिबास आपने मुझे बताना है कि ये लिबास कौन सा है। समीन, अगर आपको कितना इजी होना चाहिए, बंटवारा हो गया है, ख्वातीन यहाँ से वहाँ गई हैं, तो फिर साथ वही लिबास लेकर जाएंगी ना जो वहाँ पहनती थी, तो फिर इट शुड बी सो इजी। तो कहा है शोभना और दिनेश ने, बिल्कुल सही, दैट्स द वन, शोभना और दिनेश जो आपने कहा है। और रितु गुप्ता, करेक्ट आंसर आप सबका। बाकी कोशिश करें और 07011106106 पर जवाब दें।

और टंजानिया से शनाज बट आपका आंसर बिल्कुल सही है और सोनल मोदा ने कहा है कि इट कुड बी अ बुर्का नहीं अबाया नहीं सना काना आपने भी अबाया कहा है नो चंद्रिका वासंत यू आर एंजॉयिंग बहुत अच्छी बात है समय आंसर था साड़ी साड़ी पहनना पाकिस्तानी औरतों को बहुत अच्छा लगता वहाँ गई तो सभी ने शुरू कर दी जब तक के आए हैं ज़ियाउल हक उन्होंने आके कहा कि ये गैर मुस्लिम है इसमें गैर मुस्लिम की क्या गैर इस्लामी है लिबास तो समझ इसमें क्या है गैर इस्लामी खैर औरतें डर गईं और उन्होंने पहनना बंद कर दिया अब वो आहिस्ता आहिस्ता कर रही हैं वापस शुरू कर रही हैं और एक्ट्रेसेस जो हैं टेलीविज़न की एक्ट्रेसेस जो जवान तबका है वो और पुरानी औरतें भी बहुत पसंद करती हैं साड़ी लिबास को

0: और सिड कब से दिनेश पोपट कहते हैं व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, लेकिन कुछ आपकी स्ट्रीमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है या इट्स अ पिटी। और धीरूभाई लखानी, आपने कहा है कि आपको मेरा सलाम, मैं बहुत खुश होता हूँ सुनकर ये पुराने गाने। कहते हैं मैं 84 साल का हूँ, आई एम 84, लेकिन ये गाने मुझे बचपन की ओर ले जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। अब रितु गुप्ता।
1: प्रवीण जी नमस्कार। प्रवीण जी आप भी साड़ी पहनना, हम आपको देखना चाहते हैं साड़ी के लिबास में। आपकी हाइट अच्छी है ना, तो आपको बहुत सूट करेगी। रियली रितु गुप्ता।
0: रितु मैं यही सोचती हूँ कि बांधनी आनी चाहिए, है ना, कि बांधनी कैसे है। आजकल तो रेडीमेड भी मिलती हैं, तो करना है। मुझे बहुत शौक था एक ज़माने में, और एक दफ़ा पहनी भी तो किसी कोई होंगी वो ऐसी बुरी ख़वातीन, मुझे लग रहा था कि वो देखकर हंस रही थी और फिर मैंने पहननी बंद कर दी। पर नहीं, या यू आर राइट रितु, आप मुझे एनकरेज करती रहें।

0: और अल्फा मुंगटा रूंगा ये कहते हैं सत्तर का जमाना था, सिक्सटीज सेवेंटीज, हम लोग साड़ी इतने शौक से पहनते थे। जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था, समझ कोई तकरीब होती थी, तो साड़ी पहनना पहली पसंद होती थी। तो कहती सच एन एलिगेंट ड्रेस, सो ग्रेसफुल। और कहती मैंने तो जाकर सीखा था कि साड़ी कैसे बांधनी है, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपकी साड़ी बांध। थैंक यू सो मच आरफा। और रुखसाना शबीर जॉइंड अस, गुड। टुडेज प्लेलिस्ट इज सुपर, ऊपर सुपर से ऊपर है, सना काना ने कहा है। मंजुला विश्वकर्मा ने भी कुछ कहना है।
1: रवीन जी, अभी जो आपने गाना सुनाया था ना, धीरे धीरे धीरे सो रहा है, ये गाना मुझे लगता है कि केएल सहगल जी ने भी गाया है, ऐसा मुझे लगता है। और परवीन जी, अदनान सामी के गाने अच्छे लगते हैं सुनने में, खासकर वो बजरंगी भाई जान का गाना है ना, झोली भर दे मेरी जा मोहम्मद, वो तो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा, ढूंढती हूँ, कोशिश करती हूँ। और टुडे इन हिस्ट्री, यस सर, 1821 कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, ग्वाटामाला, होंडुरस एंड निकारागुआ आज़ाद हो गए हैं, किस से? स्पेन से। ये 1821 आज के दिन। मारा डे सेलिब्रेशंस कमेमोरेटेड एनुअली सितंबर 15 टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ मारा रिवर बेसन। बहुत अच्छे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली डेजिग्नेटेड दिस डे एज नेशनल इंजीनियर्स डे। यस, थैंक यू। और सितंबर 15, 1959 इंडिया लॉन्च दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन सर्विस, दूरदर्शन। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी आपने दी है खबर। हकीकत है ये कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन सर्विस दूरदर्शन नई दिल्ली से यूनेस्को के की हिमायत के साथ नशर किया गया था। बहुत अच्छे। 1890 एगाथा क्रिस्टी, लेजेंडरी इंग्लिश डिटेक्टिव फिक्शन राइटर, इनकी वफात है, नहीं मेरे ख्याल से इनकी इनका जन्म हुआ होगा। सलीम मेहर इन लंदन। एंड यस सर, थैंक यू।
2: प्रवीण जी, अस्सलाम वालेकुम। सलीम मेहर फ्रॉम लंदन। मे यू हैव पीस, मे यू हैव वार्मथ, मे यू हैव लव, मे यू हैव एवरीथिंग यू वांट, बट अबव ऑल मे यू हैव। Good morning, Praveen ji, to you and all your lovely Bemisar listeners. Have a lovely day.
0: Great, thank you, Salim Meher or Farhanda Sheikh.
3: Welcome, Praveen. मैं फरखंदा शेख बोल रही हूँ। पहले तो आपको मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रवीण, मैंने ये कहना था, मेरे लिए ये गाना लगा दो कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। ओके प्रवीण, अल्लाह हाफिज।
0: लोग उड़ रहे हैं हवाओं में। आप कहते ओके फरहंदा, किसी दिन जरूर। दिनेश फ्रॉम सिरकत, ठंडी हवा काली घटा, क्या ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ओके, अब देखते हैं कि अगला कौन सा है आपके लिए। लेकिन समिन, आपने अकल, रेखा वालिया ने हमें दिया था लफ्ज अकल, आपने अकल पर मुहावरे देने हैं। तो अकल पर मुहावरे 0701-106-106 पर दीजिएगा, और रेखा वालिया को अपनी दुआओं में शामिल रखें।

0: और सामिन आपने बुकिंग कर ली है अपनी महफिल अनप्लग्ड के लिए, जिन्होंने नहीं की उनको अभी अभी कर लेना चाहिए, 1,000 शिलिंग अर्ली बर्ड के टिकट्स हैं। सामिन गोवन जिमखाना और 26 सितंबर का दिन है, महफिल अनप्लग्ड में आपके लिए बेहतरीन म्यूजिक होगा, हिंदी फिल्मी संगीत होगा और रिदम एंड रागा लाइव बैंड आपका मनोरंजन करेंगे। तो समय टिकट A2.com पे जाइए और अपना टिकट, पूरा जो है परिवार आए, आप ग्रुप में आएं, दोस्तों के साथ आएं और कर लें अभी अभी बुकिंग, बाद में समय मायूसी हो जाती है। खैर अब देखते हैं यहाँ पर कि किसने आंसर क्या किया है। सबसे पहले जो है अशोक का मैसेज सुनते हैं।
1: जी नमस्ते, सभी सुनने वालों को नमस्ते। और ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, मैं ठीक से सुना ही नहीं उसका जवाब सही है या नहीं। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अभी जो ज़माना है यूरोप में आ गया तो वो सब नहीं है। सिर्फ जब शादी होता है या निकाह होते हैं तो हम ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, लेकिन इंडिया में, बांग्लादेश या पाकिस्तान में जाएगा ना, गाँव में, वहाँ पर ये सब चलता है। शहर में कहाँ चलेगा ये सब, मॉडर्न टाइप के आदमी हैं, अब ये लोग छोटे कपड़े पहनेंगे।
0: जी जी, छोटे या बड़े कपड़े बिल्कुल, और यही है ना, परंपरा होती है और क्या करेंगे।
2: हेलो प्री जी, साड़ी दिया तुसी गल्ला कर रहे थे, मैनू भी याद आ गया कि मैं भी साड़ी पहले बहुत पाउंदी हुंदी सी, गुरुद्वारे भी जाना साड़ी पाके जाना, जो जो साड़ी पाउंदी हुंदी सी ना, फिर हील वाली जुत्ती दे नाल साड़ी फिर ठीक लगदी आ, लंबा बंदा होवे ओनू ज्यादा सूट करदी है। थैंक यू जी।
0: जी बिल्कुल, कद हो तो या ऑफ कोर्स साड़ी, कमाल है जतेंद्र। और अमीना, I loved wearing sari when I was in Kenya in 1970s. I also wore it at work on Saturdays because it was half day. At that time, I was working with Gujarati people, so I blended in fantastically. Amina Manchester, badi achhi baat hai. Good one. Ye share kar rahi hain aap. Zameena, aap dekh sakte hain ki jo bhi hain, सभी को साड़ी पसंद है, इसका धर्म के साथ क्या लेना देना है। सना काना, आपने अभी जो आंसर दिया है वेरी गुड, अकल को लेकर अभी सुनाती हूँ। और यस, सलमा ने भी आंसर दिया है करेक्ट है। एक वॉइस मैसेज आया।
3: हेलो सलाम परवीन जी। परवीन जी, आज जो आपने गीतों की ये माला पिरोई है, कमाल कर दिया परवीन जी, एक से बढ़कर एक गीत। खास मेरी पसंदीदा एक गीत था परवीन जी, वो

0: शुक्रिया प्रभु जी, ये मेरी पसंद का गीत था, धन्यवाद। गीत गाने के लिए माफी चाहूंगा।
1: अजय पाल जी जी, वो कुंदन लाल साहिगल ना अभी कह के गई हैं मंजुला विश्वकर्मा जी। हाँ, अभी ये फिर लता ने गाया, लेकिन पहले औरों ने गाया हुआ है, रितु गुप्ता।
2: प्रवीण जी, एक तो है अकल का दुश्मन, दूसरा है अकल के अंधे, तीसरा है अकल के घोड़े दौड़ाना, चौथा है अकल ठिकाने लगाना, पांचवा है अकल चरने जाना, छठा है अकल बड़ी जा भैंस, सतवा है अकल पर पत्थर पड़ना। रितु गुप्ता, और याद आएंगे तो बताऊंगी।
1: एक ही मैंने कहा था, एक या दो, ठीक है, एक एक दो दो करके। अब बिंदु फ्रॉम जयपुर, नमस्कार। अकल ठिकाने लगा देना, अकल का दुश्मन, बिल्कुल सही। सोनल मोदा, अकल का अंधा, अकल ठिकाने आ गई, ओके, अकल का दुश्मन, वाह सोनल मोदा। और सईदा खान, आपने जो फॉरवर्ड भेजा, थैंक यू। और साथ ही चलते हैं इनके पास, शारदा के। शारदा, आपने कहा है लिटरल ट्रांसलेशन, अकल ठिकाने लगाना, मीनिंग टू टीच समवन अ लेसन, बिल्कुल अकल ठिकाने लगाना। और भी एक एक दो दो करके आप भेज सकते हैं अकल पर।
3: ईस्ट एफएम, ईस्ट एफएम, ब्यूटी ग्लैमर एलिगेंस एंड स्टाइल ऑन 19th एंड 20th सितंबर, गेट रेडी टू इमर्स योरसेल्फ इन द अल्टीमेट लग्जरी शॉपिंग एक्सपीरियंस, डिवालिशियस नैरोबी 2026। You know Divalicious doesn't hold. So come be amazed by high-end fashion, exquisite jewelry, stunning accessories, chic home decor, and so much more from over 30 celebrated designers. Happening at Trademark Hotel, Village Market on 19th and 20th September. Divalicious Nairobi 2026. Your luxury and shopping event awaits. See you there.
4: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. Spiced with the perfect blend of your favorite music. East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: क्या बात है, बस ये आखिरी था भीगा भीगा गाना। और शनाज बट आपने कहा है अक्ल से काम लेना। शहजादी आदम आपने साड़ी में अपनी तस्वीर भेजी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है और मैं देख रही हूँ कि ये वो कीमती साड़ियों में से एक है। कमाल, शहजादी आदम फ्रॉम जोहान्सबर्ग। कितना शौक था हमें, पर शुक्र है कि आजकल आपका ड्रेस डिक्टेट नहीं कर सकते हुक्मरान। वो ज़माना था जब वो डिक्टेट करते थे कि आपने क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना।
1: परवीन जी, अकल के ओथमीर गुजराती में।
0: अच्छा, ओके। दिनेश पोपट, अकल का जाम, वाह, सिड कप। दिनेश पोपट फ्रॉम लंदन। अकल चरने जाना, ओके, अकल इसकी तो अकल चरने गई है। जैनब, अकल बड़ी के भैंस। मैं सोच ही रही थी कि ये पूछूंगी जमीन आपको, अकल बड़ी के भैंस इसका मतलब भी क्या है ये भी बता दें। अकल नो बरदान, अकल बड़ी के भैंस और अकल घास चरवा गई। अच्छा, वो गुजराती में है, ओके। और ये है परमिंदर चाना फ्रॉम किसुमु, सत श्री अकाल। अकल का घास चरन, अकल घास चरने गई, अकल का नहीं, अकल घास चरने गई। जाने तेरी अकल कहाँ घास चरने गई है। बिल्कुल, ये आपने सेंटेंस भी बना दिया है। और मंजुला विश्वकर्मा,
2: परवीन जी मैं दो दे रही हूँ, अकल घास चरने जाना और दूसरा है अकल पर पत्थर पड़ना। परवीन जी आप बिल्कुल एक एक या दो दो ही आप लिया करो, लोग और भेजते हैं ना तो उनको आप मत पढ़ो, क्योंकि एक ही जन सारे बता देगा तो फिर बाकी के लोग क्या बताएंगे, तो वो उसमें आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए।
0: हाँ, ये बात हुई ना, ये टीचर स्ट्रिक्ट नहीं है अपने दौर में। समझ, मैंने कभी एक बार हाथ किसी स्टूडेंट पर नहीं उठाया था। मंजुला, ओके, यू आर राइट, एक दो ही दीजिएगा, यही है उसूल।
3: हेलो परवीन जी, कैसे हो? आपने आज जो साड़ी का टॉपिक उठाया बहुत अच्छा है, मुझे इतनी पसंद है साड़ी। और ये एक ही लिबास है जो हमेशा शरीर को अच्छी तरह से ढक के रखता है और बहुत ही एलिगेंट लगता है। आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, आप बोलना, मैं सिखाऊंगी आपको। और दूसरा, आपने जो आज गाने रखे हैं बहुत बिगी बिगी, जो हवाएं आज जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से, बहुत मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और दूसरा, जो अक्ल का आपने बोला है उसमें मेरे पास बहुत सारे हैं, मगर आपने एक दो बोला है तो मैं एक दो ही बोलूँगी। अक्ल बड़ी के भैंस हमारे गुजराती में बहुत ही कॉमन है। और दूसरा है अक्ल का अधूरा, जो आधी अक्ल से काम करे उसको अक्ल का अधूरा बोलते हैं। थैंक यू सो मच, नीला शेठ।
0: अच्छा नीला, मुझे लगा अकल का अंधा कहते हैं, लेकिन आपने अधूरा कहा है, ओके। और यहाँ है जतिंदर।
4: हेलो पी जी, अकल तो है कि कहते अकल से ठिया जाना, कि अकल कट जाना, अकल खाते छुटना भी, अकल तो कम ना लेना, अकल गिट्टियां विच होना, मूर्ख होना। थैंक यू जी। हेलो पी जी, एक दो होर हैगे, कहिंदे अकल ते पत्थर पैना, के कुछ ना सुझना, अकल दी गल करना, के सोच समझ के गल करना, अकल दे घोड़े चढ़ा दड़ाना।
0: अच्छा, अकल के घोड़े दौड़ाने का आपने ही बताया, ये भी नहीं बताया कि अकल बड़ी के भैंस इसका मतलब क्या है, कब इस्तेमाल करते हैं। द टू वुमेन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश वर ऑलवेज सीन इन अ सारी, एंड बांग्लादेश इज एन इस्लामिक नेशन। बिल्कुल कल्पना, एंड दे बाय सारीज फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही है, न जाने किन किन लोगों को हम हुक्मरान बना देते हैं। उसकी अक्ल घुटनों में है, बिल्कुल, ये आपने कहा सलमा। और सलेश और शीला।
5: परवीन जी, एक ये भी है, अकल बड़ी या भेस बड़ी। थैंक यू वेरी मच शीला एंड शैलेशा।
0: नहीं नहीं, मतलब आपने नहीं बताया कि इसका मतलब क्या है।
5: बड़ी
0: सो मतलब के बगैर इसका कोई फायदा नहीं है ना। और आप कौन हैं, क्या कहने वाली हैं?
6: ऐसा सबक सिखाएंगे उसकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। अक्ल सूतारी घास खावा गई छे, सूतारी घास खावा गई छे, तारो तो मगर ठिकानो न। सारी की बात आई है तो सारी स्पीक का ग्रुप है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गोवा में शुरू हुआ था और कितनी कंट्रीज में अभी ये सारी स्पीक ग्रुप का सेलिब्रेशन हो रहा है। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ वन ऑफ देम एंड वी हैव अ प्रोग्राम एवरी थ्री मंथ्स इन केनिया फॉर द सारी स्पीक ग्रुप ऑल लेडीज वेयरिंग सारीज। लास्ट टाइम हमने बॉलिंग गेम की थी साड़ी डालकर और इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गाँव में साड़ी। साड़ी इज अ ब्यूटीफुल वेयर, कोई भी इसमें अच्छा लगता है, जितने भी मोटा हो पतला हो। साड़ी की फैशन कभी भी नहीं जाएगी, हमेशा रहेगी और उससे कभी भी किसी ने इसका अपमान इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छी तरह से किया है। साड़ी का बहुत रिस्पेक्ट भी है। मेरी सिस्टर इन लॉ सिंस वॉज मैरिड अप टिल द डे शी पास्ड अवे उसने हमेशा साड़ी डाली है। सिर्फ हज के लिए उसने चेंज किया था, बाकी सारी जिंदगी उसने साड़ी में। उसके पांच बच्चे को बड़ा किया इंडिया में। व्हाट अ बिग एफर्ट फॉर हर टू बीइंग साड़ी एंड टेकिंग केयर हर किड्स हरसेल्फ इन इंडिया। थैंक यू
0: रुखसाना शबीर, दिस इज गुड इंफॉर्मेशन फॉर मी कि आपने कहा कि जो भी साड़ी पहनते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब है, कोई सोसाइटी है और हर तीन महीने के बाद आई डोंट नो फ्रॉम वेयर कहाँ कहाँ रखते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया कि आप सारी वेयर को प्रमोट करें, बहुत अच्छे। और जैनब, इट मींस अ फिजिकली पावरफुल पर्सन इज नेसेसरी इज नॉट नेसेसरीली स्मार्टर देन समवन हु इज वाइज। बिल्कुल अकल बड़ी के भैंस जैनब, वेरी गुड कि आप आजकल आंसर भी देती हैं।

0: और नाज़नीन कहती हैं कि गुड मॉर्निंग प्रवीण जी, अकल बड़ी के भैंस इम्प्लाइज द ब्रेन इज ग्रेटर इवन दो द भैंस इज बिगर इन साइज. बिल्कुल. और जतिंदर,
1: हेलो प्रवीण जी, अकल दे कोड़े दड़ाना हुंदा कि फजूल दी कल्पना करना, अकल नु जंदरा मारना बिना सोच समझे कम करना. थैंक यू.
0: अच्छा, अकल के दौड़े घोड़े दौड़ाना यानी बेवकूफों की बातें करना. ओके, बहुत खूब.
2: प्रवीण जी, आपको व बेमिसाल लिसनर्स को मेरी प्यार भरी नमस्कार. भगवान की कृपा से नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, सो आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट. सो होप ऑल माय फ्रेंड्स, दैट इज I miss them a lot. Now I assure them that I will start participating regularly. तो जो प्रोवर्ब था अकल, उस पर मैं भी कुछ मुहावरे बोल रही हूँ. पहला है अकल के तोते उड़ जाना, दूसरा है अकल के अंधे गांठ के पूरे, नेक्स्ट है अकल का पुतला, नेक्स्ट अकल खर्च करना, नेक्स्ट अकल से मतलब न होना. थैंक यू रेखा वाली.
0: इतनी खुशी हुई है रेखा आपकी आवाज सुनकर, कभी किसी मैसेज ने इतना हमें खुश नहीं किया. तमाम लिसनर्स एग्री करेंगे कि आप एक बड़े कठिन दौर से निकल कर आई हैं. खुदा ने आपको, भगवान ने शफा दी है. बस बाकी समय यही है कि आप हर पल ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, एक्चुअली उसके दरबार में झुककर. रेखा वालिया, हम आपके लिए बहुत खुश हैं. और बॉलिंग सारी पहनकर बॉलिंग करने की तस्वीर भी भेजी है रुखसाना शबीर ने.
3: का ग्रुप है, यू मे जॉइन, देयर इज नथिंग, नो फीस टू जॉइन, यू जस्ट हैव टू जॉइन वेयरिंग अ साड़ी एंड सेंडिंग योर फोटो. अगर किसी को भी जॉइन होना है, विल सेंड द लिंक टू देम. साड़ी स्पीक का ग्रुप है हमारा, फेसबुक भी है, और इसमें कोई फीस आपको सिर्फ ज्वाइन होना है और साड़ी डाल के आपका फोटो डालने का है. लास्ट अर्ली जनवरी अवर लेडीज वेंट टू गोवा टू सेलिब्रेट 10 इयर्स ऑफ साड़ी स्क्रिप ग्रुप का एनिवर्सरी.
0: वाह क्या बात है, ये साड़ी वेयरर्स की ग्रुप है 170. ओह एंड देन दे हैव साड़ी स्पीक्स इज द नेम, साड़ी स्पीक्स. ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है रुखसाना शबीर. मोर वुमेन शुड जॉइन यू. और मंजुला विश्वकर्मा,
4: प्रवीण जी, साड़ी तो बहुत अच्छी लगती है और सबके ऊपर, क्योंकि ये ड्रेस इतनी एलिगेंट है, ग्रेसफुल है. इसको अगर आप पहन लो तो ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ऐसा लगे कि यार इसने क्यों पहना है. मैं तो बहुत पहनती हूँ और मैं सोच रही थी कि आपकी तो हाइट भी इतनी अच्छी है तो आप पर तो बहुत अच्छी लगेगी. आप तो सच में प्रोग्राम पार्टी वार्टी में तो आप साड़ी पहनना चालू कर दो, देखो आपको कितनी तारीफ मिलेगी.
0: वाकई दिस इज रियली इनविग्रेटिंग. मैंने अब आज ही जाना है और कुछ शिफॉन की साड़ीज खरीद लेनी. शिफॉन मुझे बहुत पसंद है और आप देखें शिफॉन की बेस्ट होती है साड़ी. अच्छा, ब्रेक का टाइम आ गया, तारीफें सुन सुन.
5: Your family.

0: Anthony Ngala. Political parties have declined to sign NCAC Political Peace and Accountability Charter, citing inadequate involvement in its formulation and limited public participation. They also protested the absence of major parties at the signing ceremony and accused NCAC and security agencies of failing to curb political incitement and divisive remarks. NCAC says it will address all concerns and secure the charter's signing within a week.
1: We have seen that some political parties that are the major culprits in the generation and perpetration of injustice failing to show up here. The question is, why did they not show up?
0: People's Party of Kenya leader Ndindi Nyoro has put President William Ruto's political allies on notice over remarks on vote rigging in next year's election. Speaking in Kajiado, the Kiharu Member of Parliament said opposition will not sit back and watch such claims being actualized. Nyoro warned that opposition will defend its votes during the tallying process to safeguard accountability and integrity of the electoral process.
2: Na kwa sababu wa Kenya wamekubali unaenda nyumbani, tunataka tutume warning kwa hawa viongozi. There is no one who can steal even one vote here in Kenya. Tutapiga kura na tuiride na tutagaze na tuapishe.
0: Manyata Member of Parliament Gitonga Mukunji has through his lawyers demanded an impartial investigation into the deadly violence that erupted in Nembure Stadium in Embu County during a UDA delegates meeting presided over by Deputy President Kithure Kindiki. Lawyer Ndegwa Njiru accused the National Police Service for pursuing and intimidating his client despite early indications that he was not a subject of investigation. Mukunji resurfaced on Sunday evening accusing police of laying siege at his home over the violence waiting to apprehend him. The Kenya Forest Service has convened a meeting with the management of Muthaiga Golf Club at its headquarters to resolve a land dispute involving a section of the club's property. This is after the golf club claimed that a section of its land had been taken over by the Kenya Forest Service on grounds it falls within the Karura Forest area. In a statement, Kenya Forest Service said approximately 21.8 hectares of the property claimed by golf club fall within the legally gazetted Karura Forest. Kiharu Member of Parliament and People's Party of Kenya leader Ndindi Nyoro has pledged to establish a health commission to oversee recruitment of healthcare workers if elected president next year. Speaking in Kajiado, Nyoro said the commission would address persistent hiring challenges and disputes affecting health workers, despite health being a devolved function. He also criticized President William Ruto for allowing the recent resolved nurses' strike to continue within 40 days without intervention.
2: Hata kama ni sheria tutabadilisha, tubadilishe. Tutengeneze Kenya Doctors and Healthcare Professionals Commission. Wakue wanaajiriwa na serikali kuu. Dio wakitaka ni transfer, unatransfer. Sasa huwezi toka daktari Kajiado, uende Narok.
0: And that's the news update on East FM. I'm Tony Ngala.
3: And that's the news from around the world on East FM.
4: East FM, Kenya's premier Asian mix.
5: Gajanan ki gatha brought to you by Mara and Kaji. आज की गजानन की कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने चाहा कि उस समय उन्हें कोई परेशान न करे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक था गणेश। पार्वती ने गणेश से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम द्वार पर पहरा देना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ने माँ की आज्ञा को अपना धर्म मान लिया। कुछ देर बाद भगवान शिव वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। गणेश ने रास्ता रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। माता ने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी है। भगवान शिव ने गणेश को समझाया, मैं पार्वती का पति हूँ, ये मेरा घर है। लेकिन गणेश जी अपनी जगह से नहीं हटे। बात बढ़ी, संघर्ष हुआ और क्रोध में भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती को यह पता चला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवताओं ने भगवान शिव से समाधान करने की प्रार्थना की। फिर एक हाथी का सिर लाया गया और गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया गया। भगवान शिव ने गणेश को पुनः जीवन दिया और वरदान दिया कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा होगी, इसलिए वे कहलाए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणपति। दोस्तों, ये कथा कई परंपराओं में अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है, लेकिन इसका मूल भाव गणेश के जन्म, पुनर्जीवन और प्रथम पूज्य बनने से जुड़ा है। इस कहानी में सबसे सुंदर बात है माँ और पुत्र का संबंध। गणेश हमें बताते हैं कि आज्ञा का पालन केवल डर से नहीं, प्रेम से भी होता है। और हाथी का सिर क्यों? क्योंकि हाथी विशाल तो है लेकिन शांत भी है, यानी सच्ची शक्ति वह है जिस पर बुद्धि का नियंत्रण हो। और शायद यही कारण है कि गणेश को बुद्धि और विवेक का देवता माना जाता है। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गजानन की गाथा वॉज ब्रॉट टू यू बाय मारा एनकाजी, योर होम इन द वाइल्ड। स्पेशल ऑफर्स फॉर द हॉलिडे सीजन।
4: ईस्ट एफएम, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।

What is up? क्या बोल रहे सब लोग? MV बंटा है मालूम है ना? मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. Let's do it. Hey.

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पे जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम